मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन।

मोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औगुजरी सांग

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुख।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल बढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंद

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश भुगत ज्ञान दया पंडारण घड़ घड़ वाजहै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी।

तिनका पौ सब गुआसी, जिन सेवा मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडहार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते तमन सुमार संबत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पव।

मद देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आजा पावन पीन अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सावन ना थाओ। पी तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी खिर में खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रतपालगी, लेखै साध विरास, अंतर गुरमुख तू वसे, क्यों भावे त्यों निरजास, जीअरे राम जपत मनमान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रखाओ, अंतर की गत जानिए, गुर मिल गए संग उतार, मोया जित कर जाइए, तिद जीम दिया मर मार, अनखा सब सुहावने।

पुत ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है, खोट ना सीज सकोए, खोटे खोट कमावना आए गया पद खोए। नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा। हर जप लहा अगला निरपो हर मन माहा, त्री राग मखला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी एड़े दिन चार, पबन घेरे पज्यो टाल टुल जुमन हार, रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके।

की बाणी यो मन रत्ता माया खसम की नदर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया ई का रखे पंज कर साथी नाओ शैतान मत कट जाई नानक आख राहे पै चलना माल तन कितकू संजया ही श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जन

हथ न आवई, अंत गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हरसे ती लिव लाए, देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, सेव पई तिन ताए, हर गुण गावे हर निद पड़े, हर गुण गाए सुमाए, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी एक मन नाम ते आया, गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले, तेत सच्चे दरबार, वे अमृत पीवे।

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाईए, होर करना किशु न जाए, देवन वाले कहे हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जिया की तोन तेहा होवा, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है, विण नावे निर्मल ना होए, पूरे भाग नाम मन वसे, शब्द मिलावा होए, नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए, श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे, विच्चों होमे ना जाए, अध्यात्म कर्म जे करे, नाम ना कब ही पाए, गुर कै शब्द जीवत मरे, हर नाम से मन आए, सुन मन मेरे, भाजे सदगुर सरना, गुर प्रसाद दी छुट्टी है, विग भवजर शब्द गुर तरना, हरहाओ, त्रैगुण सभा तात है।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत, हरहाओ मन की इच्छा पूरियां शब्द रहा भरपूर, पाए पाए भगत करे दिन राती हर जीव वेखे सदा हदूर, सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से राम विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब सीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन शब्द दे सोने, ते सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना, जेदा अंत न पारावार, कड़कड़े आपे हुमस

कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदया रंग चलूले नाए, मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए। हरहाओ मन रंगोवड़ भागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हों सतगुर कह बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लभई, लख कोटि कर्म कमाओ, बिन भागा सतगुर ना मिले, हर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, ते पड़दा दूर पईयास, बिन सतगुर भेटे कंचन नाथीए, मनमुख लो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोध हर नाम है, किद चढ़िया जाए, सतगुर के पाणे जो चले, विच बोध बैठा आए, तन तन वड़भागी नानका, जिन्ना सतगुर लए मिलाए। श्री राग महला चौथा, हाँ पंथ साई नित कड़ी,

आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले सुमाए, त्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अब भला, केत बिद मिले रसकाए, जाय पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए, कोय वे प्रवाह ना बोलनी, हो मरमल धोवा तिन पाए, भाई रे मिल सज्जन हर गुणसार, सज्जन स गुरपुरख है, दुख कड्ढे हो मे मार, हरहाओ गुरमुखियां सुहागणी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वजनर तन है, जो मने सो हर रस खाए, सेवड भागी वड जानिए, जेन हर रस खादा गुर पाए, यो हर रस वणतन सबत है, पागहीन नहीं काय, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मानमुख रहे बिरलाए, कोई सतगुर आगे नानवे, उन्ना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत टोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसया मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन चढ़े फिर आसवे, रैन सवाई जाए, आप कटे नर ना बुझे, नित मूसा लाज रुकाए, गुर मिठा माया पसरिया, मानुख लग माखी पते पचाए, भाई रे मैं मीत सका प्रसोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोय न होए, हरहाओ गुरमत हर लिव उबरे, लिप्त रखे शरणाए, ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पद पाए, गुरमुख दर गए मनिए, हर आप लए गल लाए, गुरमुखा नु पंथ प्रगटा, दर ठाकन कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिवलाए, अनख तुनी दर वज दे, दर सच्चे सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाया, तिना सबको कहे साबास, इनकी संगत दे प्रभ, मैं जाजक की अरदास, नानक

उत्पत्ति आएगा। शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन कीमत दिन प्रभ आप पुराया नाच जात न पात सगुर पुरुख मनाया इको सज्जन सोए हर जन का रखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोय नान करता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग मोहल्ला पंजवा मन बिलास बहु रंग घना दृट पूल खुशियां छत्र तार बादशाहियां विषय से परियां पाई रे सुख साथ संग पाया लिखिया लेख दिन पुरख बेधाते दुख सहसा मिट गया हरहाओ जेते थान संतरा तेते पवे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लाए उन बिन नावे खा कर लिया कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर करया गिरंगबारी वड साबी तब नानक सुबन थिया श्री राग महला पंजवा भलके उठ पपोलिए विण मुझे मुगद अजान तो प्रचेतन आयो छुट्टेगी बेबान सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित को फकड़े सा मुगदी चली रैण अरहाओ उदम करे पस पंखियां दिसे नाही काल ओते साध मनुख है पाथा माया जाल मुगते से ही पालिए जे सच्चा नाम समाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माघे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाघे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाघे कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाह डुबदा लया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा तड़ी मोहत का पौना ताज सवारन हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उड़ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंधी पागे जे हो भी पूर बिल गया ता गुर का भजन कमागे हरहाओ हरी नाही नै डडरी पक्की वड्डन हार।

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग मोहल्ला पंजवां प्रीत लगी तेस सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

दे ना वसई कार्ज किते ना लेख मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साध की पुर चरणी चित लाए हरहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक होवे पाग कार्ज सब सवारी है पुर की चरणी लाग हो मेरो प्रम कटी है ना आवे ना जाग कर संगत तू साध की आरसर तीर्थ नहाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एओ सवाओ ऐथे मिले वडाइया दरगे पावे थाओ करे कराए आप प्रभ सब

सच संजमो आढ़ पैर गुण गाओ, कर कृपा प्रापेटिया मरणन आवन जाओ। मेरे मन हर पाज सदा एक रंग, घड़ घड़ अंतर रब रहया, सदा सहाई सा।

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस नाम।

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते होए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल इस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालियां सह बिन अवर ना जाए, इस आग

विचार क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे ए करणी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदागी कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख को ई विरला गात अवगत कछ नदर न आया संतन की रेण नानक दान पाया।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कसक सवट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मनमुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पे सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाउ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगती पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

रहे सुहाग भाई रे अबर नहीं मैताओ मैं तन्नाम निधान गए गुरदिया बल जाओ अरहाओ गुरमत पात साबा तिस तिसके संग मिलाओ जिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ बिन सतगुर नाओ ना पाईए बिन नावे क्या सुहाओ आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत तब लग मैल ना पाईए जावलग साज ना चीत सब दरपे कर बाईए निर्वाणी पद नीत हाँ गुर पूछो अपने गुर पुशकार कमाओ शब्द सलाही मन वसे हाँ में दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ सब दरते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार सब मरे सो मर गए

मैं तुद मिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए। हरहाओ नाम सलाही रंग स्यो गुर के शब्द संतोख, जो दिसे सो चलसी कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख, आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए, जुत पावे से पले खोटा खरा न कोए। कुरसरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास, अच ताद पासा की घड़ी गए शब्द विगास। आपे परखे पारखू पवे खजाने रास, तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए। कहने हाथ न लभई सच के पद पाए, गुरमत तू सारहाना होर कीमत कहन न जाए। जित तन नाम न पावई तित तान हो मेवा।

नाम तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोय रहाओ। राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मुनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार। आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासीए नारे हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित लेवित जामुनु सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचिए कर्म वस्त सुधाए मन मुखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए। साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इओ तनो अग्नि पास पिराण पावने के वस देवरी मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगिए मुआरा लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम हूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए बिंदल कमल सो नाथिए।

ना पौड़ी तित तास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मिलनी तरियास। पाई रे भवजल बिगम डराओ, पूरा सतगुरु रस मिले गुर तारे हरनाओ हरहाओ। चला चला जे करी जाना चलनहार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सराहना सच्चे थान प्यार, दार कर महिला सोने पक्के कोड़ हजार। हस्ती कोड़े पखरे लश्कर लाखे पार, इस ही नाल न चलिया खब खमुए असार। सोई ना रुपा

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार तार कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मई अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदिया श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

सतगुर मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाए, ऊरे शब्द सब सोझी होई, हर नामे रहे सुमाए, मन मेरे सतगुर से चित लाए, निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए, अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई, क्यों रखे त्यों रहना, कुर के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पवजल तरना, वडे भाग नाव पाईए, गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन मसिया प्रभु करता, तैजे रहा सुमाई, एक ना मनमुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया, लख चौरासी फिर आवे, बिरता जन्म गवाया, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अनदिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम सुमाते, गुरमुख अमृत बाणी बोल है, तब आत्म राम पछाणी, एक कोसे मन एक अराध है, गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरमुख वस्ते मन आए, सदा रंग राते सच स्यों,

भगवती रहत जुगता, जोगी कहत मुगता, तपसी तपह राता, मोनी मोन तारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नवे प्रकार, पंडित वेद पुकार, गृहस्थी गृहस्थ धर्महता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आ परसा, एक लूक न देवह दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, ताट न किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मिले सो पगता, सागल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुरचरण पराता, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, श्री राग मोहल्ला पहला कार तीजा, जोगी अंदर जोगिया।

तो संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना तर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा सब नावे नू परतापदा सतगुर बाज ना पायो ता मोही माया जाल दियो सतगुर कौ पल जाइए जित मिले परमगत पाईए सुर नर मुंदन लोच दे तो सतगुर दिया बुझाए जियो सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो यो जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटों कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया इन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया या को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरध सुमारिया कंठ लाए कै रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंतन प्रभु त्याया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

पैर विसर गया ध्यान, तीजे पैर रैणके बन जा रहा मित्र, धन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्र, बदा छुट्टे जित हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल पया संग माया, तन सिंह रत्ता जोबन मत्ता,

ब्रह्म विचारया जन्म सवारया पूर्ण कृपा तब करी कर गै लीने हर जसो दीने जोन ना तावे नै मरी सत गुरदयाल कृपाल भेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ सुवामी।

नामक जिन श्रेया सब को जियो भारती सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो घर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुर सुननाई पाइये वणजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाओ संत जनाविन पाइया हर किने ना पाया ना हो विच होमे कर्म कमाम दे जो वेसवा पुत निनाओ पिता जात ना होई है गुर तुठा करे पसाओ वडभागी गुर पाया हर अहेनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर घर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ हर हाओ जब लग जोबन सास गए तब लग नाम त्याए चल जा नाल घर चलसी हर अंते ले छिड़ाए हों बलेगारी तिन को जिन हर मन उठाया जिनी हर घर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्त घर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए मन घर घर प्रीत लगाए

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हों बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसमें चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मानमुख ना विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हस है, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत भावे तां लागे भाओ, परम पुलाव चू जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमै मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पौ मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर भया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, अय जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नर गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दुष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ये जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत, और दुनी सा परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

कुंड जब आहित उर ध्यान लेवे लागा मृतक पिंड पद मदना अहनिस एक ज्ञान सु नागा ए दिन संबल कष्ट महा दुख आप चेत अल्प सारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आय तो नर हर मनो मसारिया फिर पछतावेगा मूढ़िया तू कम कुमत प्रम लागा चेत राम नाही जयपुर जाएगा जन बिच रे अनराधा राव बाल विनोद चिंद्र सलागा खिन खिन मोहे व्यापे रस मिसमेद अमृत दिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जब तब संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अराध्या कुछ लिया काम काल मत लागी तो आन सकत काल बंधया तरन तेज परतरे मुख जो है तर अवसर ना पछाणया उन मत काम मां दिख भूले पाप उन ना पछाणया सुत संपत देख यो मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भाग मुख जन्म मगोया पुंडर केस कुसुम ते तौले शब्द पाताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाठी ता काम पवस माधानी ताते विखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाशे पछताना निगटी दे देख तन उबजे मान करतनी बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे ठाका ते उड्या मन पंखी कर अंग न सुखाई बेणी कहे सुनो रे भगत मरण मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा तनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हमना पाप करंता अहे अनंता पतद पावन नाम कैसे हुंता रघाव तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्राप्त जान जानी जय जानते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहु रवदास समदल समझावे को राग माज

जियो पिंड सबरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निब निब लागा तेरी पाई, तारक मावा जित पावा, जां तू दे दयाला जियो, प्रभु तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे पै कुंत साई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नांग सो पाया, आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो, माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांध पई बूझी सब तृष्णा, अंध पया सब ठाई जियो, सुख दाता दुख पंजन खारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतपाले,

प्रकाश हुआ जी अन दिन हर गुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

सदा आनंद रहे सुखदाता गुरमत सहे सुमावने काय अंदर हो मैं मेरा जमन मरना चुके पेरा गुरमुख होवे सो हो मैं मारे सचो सच त्यावने काय अंदर पाप उन दे पाई दोही मिलके सिर टुपाई दोवे मार जाए इकत करे आवे गुरमत सहे सुमावने तारगी माहे दूजे पाए अनहेरा चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंत नाम त्यामने अंतर जोत प्रगट पासारा और साखी मिटिया अंधेरा कमल विगास सदा सुपाया ज्योति जोत मिलावने अंदर महल रतनी परे पंडारा गुरमुख पाए नामे पारा गुरमुख वणजे सदा व्यापारी लहा नाम सद पावने आपे वस रख आपे दे गुरमुख वणजे के ही के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन मसावने माज मखला तीजा हर आपे मिले सेव कराए गुर के सद पा दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण में आप सुमावने हों मारी जू मारी था सच्चा हिरदे विसामने सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन मसावने रखाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेव सेव गुरम खर जाता अमृत नाम सदा जन सोह है गुरमत हर्ष पावने इस गुफा में एक थान सोहाया पूरे गुर हमें परम चुकाया अंदर नाम सलान रंग राते गुर कृपा ते पावने गुर के शब्द यो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे हर गुण गावे सब सोहाए मिल प्रीतम सुख पावने जम जागाती दूजे पाए कर लाए नाव फूले देश जाए कड़ी मूद का लेखा लेवे रतियों मासा तोल कढ़ावने पेयड़े पिर चेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही खरी कवाले क्रूप कुलखनी तुबने पिर नहीं पावने पेयड़े पिर मन मसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन पिर राख्या कंठ लाए सबदे पिर रावे से सुहावने आपे देवे सद बुलाए अपना नाओ मन मसाए नानक नाम मिले वड्याई अन दिन सदा गुण गावने माज महला तीजा उत्तम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवे कर्म है उदासा हार रंग रह सदा रंग राते हार रस मंत्र तामने हों मारी जू मारी पढ़ बुझ मन सामने गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चे सोभा पावने रखाओ अलख पियो हरया सुमाए उपाय न किती पाया जाए कृपा करते सतगुर पेटे नदरी मेल मिलावने दूजे पाए पड़े नहीं बूझे त्रिवद माया कारण लूझे त्रिवद बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावने यो मन चंचल वसन आवे दुबदा लागे दह दावे बेख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माए पचावने हौ हौ करते आप जनाए बहु कर्म करे किस थाए ना पाए उते बार किसी ना होए बगसे सब सुहावने उपजे पति हर बूझे नाए अंदन दूजे पाए फिराही मनमुख जन्म गया गे बिरता अंत गया पछतावने फिर प्रदेश सिंगार बनाए मनमुख अंध ऐसे कर्म कुमाए पलतना सोभा पलतना टोई बिरथा जन्म गुमावने हर का नाम किने विर ले जाता पूरे गुर के शब्द पछाता अंदन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावने समय वरते एको सोई गुरमुख विरला बूझे कोई नानक नाम रते जन सो है हर कृपा आ मिलावने माज मखला तीजा मानमुख पढ़े पंडित कहावे दूजे पाए महा दुख पावे विख्या माते के सूजे नाही फिर जूनी आवने हो मारी जू मारी होमे मार मिलावने गुर सेवा ते हर मन वसया हर रस सहज पी आवने रखाओ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद बखाने मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधेरा गुरमुख बूझ कर कामने आ कथो कथगे सब सुहावे गुरमत्ती मन सचो पावे सचो सच रवे दिन राती प्यो मन सच गामने जो सच रते तिन सचो पावे आपे दे ना पछोतावे गुर के शब्द सदा सच जाता मेरे सच्चे सु पावने कूड़ कुसत इना महल ना लागे गुरप्रसाद दी अन दिन जागे निर्मल नाव से कट पीतर ज्योति जोत मिलावने त्रै गुण पड़े हर तत् न जाने मूलों भुले गुर शब्द ना पछाने मोह व्यापे।

अंतरवस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रव कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत अराधन ससद सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अनजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसर है सो हरिया हो वे जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जी मान आओ हर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखे त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिए नान क्यों सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंदहरड़ा सुया की तुनी गामणी एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर हेवे कर गुरदीप कथे लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला पहले प्यार लगातन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार उपन्नी खेड़ पंजवे खान पीन की तात छेवे काम न पुछे जात सतवे संज किया करवास अठवे क्रोध हुआ तन नास नावे तौले उबे सह दसवे दद्दा हुआ स्वाह गए से गीत पुकारी तह उड्या हंस दसाए राह आया गया मुया नाव पिछे पत्तल सद्यो काव नानक मानमुख अंध प्यार बाज गुरु डुब्बा संसार महला पहला दस बालतन बीस रवन तीसा का सुंदर कहावे चालीसी पुर होए पचासी पग खिसे सठी के बो ढेपा आवे सत्तर का मतहीन असिया का व्यवहार ना पावे नवे का सहजसनी मूल ना जाने अब बाल टंडोल मा टूंड में डिठ में नानक जग तूए का तबल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप सृष्टि उपाति रंग परंग उपार जना बोभो बद पाती तू जाने जेन उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चुलूलिया रंग हर रंग राती तो सेवो सत नरंजनो हर पुरख विधाती तू आपे आस जान है वड पुरख वडाती जो मन चे तुद त्याएं दे मेरे सचिया बल बल हों तिन जाती।

जीभ बा जो बोलना क्यों जीवत मरना नानक हुकुम पछाण कै तौ खसमै मिलना महला दूजा जिसे सुनिए जानिए साओ न पाया जाए रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए भय के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे नानक कै सियाणिए इव कंत मिला वा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खेल रचाया हौ में गर्भ उपाय कै लोभ अंतर जनता पाया क्यों भावे त्यों रख तू सब करे तेरा कराया।

ओट पाप पुन बीज की पोट, काम क्रोध जी में चोट, नाम सार चले मन खोट, सचे गुर की सची सीख, तन मन शीतल साज परीख, जल पुरायन रस कमल परीख, शब्द रते मीठे रस ईख, हुक्म संजोगी खड़ दस द्वार, पंच वसे मिल ज्योति पार, आग तुले आपे बनजार, नानक नाम सुवारण हार, गौड़ी मोहल्ला पहला, जातो जाए कां ते आवे, है उपजे कह जाए सुमावे, क्यों बाध्य क्यों मुक्ति पावे, को अविनाशी सह सुमावे, नाम हृदय अमृत मुख नाम, नरहर नाम नरहर ने काम रखाओ, है जे आवे सह जे जाए, मन ते उपजे मन माए सुमाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुट्टे घर नाए, तरवर पंखी बौर सुबास, दुख दुखिया मन मोए विनाश, साज ब्याग तके आगास, दे दे तावे कर्म लिख्यास, नाम संयोगी गोयल थाट, काम क्रो फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुरमेर खोले बजरक पाठ, साध मिले पूर्व संयोग, सच रहस्य पूरे हर लोक, तन मन दे लय सह सुभाय, नानक तन के लागो पाए, गौड़ी मोहल्ला पहला, काम क्रोध माया में चीत, चूड़ विकार जागे गत चीत, पूंजी पाप लोभ की कीत, तरतारी मन नाम सो चीत, वह सचिंग में तेरी टेक, हो पापी तू निर्मल एक, हरहाओ, अग्न पानी बोले पढ़वाओ, जेवा इंद्री एक सुवाओ, चेतवकारी नाही पौ पाओ, आ मारे ता पाए नाओ, शब्द मरे फिर मरण ना होए, बिन मुए क्यों पूरा होए, पर पंच व्याप रहया मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, भूत चढ़ो जा आवे वार, ठाके बोहेत दर गए मार, सच सराई तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी मोहल्ला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, तिर पवन वेद्या आ मुरार, रे मन मेरे परम न कीजे, मन माने अमृत रस पीजे रघाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आमुआ मन मन ते जानिया, नजर पई हर करते जानिया, जात सा तीर्थ मजन नाम, अलग विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, ए जातो नाई कोताओ, नानक गुरमत सह सुमाओ, गौड़ी मोहल्ला पहला, सदगुर मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन अंतर पाए, गगन निवार गगन पुर पाए, मन लखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन का सरना रखाओ, फगुर मिले ता दुबदा पागे, कामल विकास मनहर प्रवलागे, जीवत मरे मारस आगे, फगुर मिले सच संजम सूचा, गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर मिले जमका पव मूचा, गुर मिले मिल अंक सुमाया, कर कृपा कर मैल दिखाया, नानक हो में मार मिलाया, गौड़ी मोहल्ला पहला, किरत पया ने मेटे कोय, क्या जाना क्या आगे होए, जो तो पाना सोई हुआ।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अग्ञानी कदे ना सीझै। इस जुग मह राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप करै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम।

आए, उत कुटुंब गृह मोहया माए, मनमुख अंधा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अन दिन भगत गुर सबदी होए, गुरमत

प्रीत होवे अन्न खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देओ हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सा प्रीत माया मुख काचा, बिन सजाए पूरा कज पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

रखे गुर संगती, उपदे दियो हर नाम छिड़ावे, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले ता विस्म हो जाए, हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है, जैसे हम सदगुर राख लिए छिड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए, जो हमरी विद होती मेरे सदगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

किस रूप नहीं, किस जात नहीं, किस टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, तस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण महला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सतगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए।

तिस गुर मिल उदरे हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हो गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। हरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर हर रूप सब जोश सबाई हर निटवसे हर कोली। हर हर निटवसे सब जग अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रट कियो गुरपूर सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। तित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते। जिनके पाग दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप आप ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीव हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जी मन दाते। मेरा मन हर सेती राते सतगुर भजन दियो अत निर्मल। जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे। जे काल के मुख जग सब ग्रसया गुर सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ। जिन को प्रीत नहीं घर सेती ते सागत मूड न रकाचे। तिन को जन्म मरण अद पारी विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल सरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे हम नृत करे कर नाचे। आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जा रे है ताचे। मेरा मन तन जियो राज सब तेरी जन नानक के सा प्रसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कान। जेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राण। राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुग्ध अशुद्ध मत होते। गुर सदगुर कै बचन हर हम जाने रखाओ। जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीका ने। हर का नाम अमृत रस चाखेया मिल सदगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सदगुर नी पेटेया ते सागत मूड देवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीप कमोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जा प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी। तो किथे हर पौ नसीए हर आपे बख्स लए पर साचा। हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सतगुर की शरणाई भजको मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए। रहाओ मेरे मन सेवो सो पर सर्व सुखदाता। जित सेवे निज कर वसीए गुरमुख जाए लहु कर अपना। तस चंदन हर जस तसीए मेरे मन हर घर हर घर हर जस उत्तम। लै लह हर मन हसीए हर आप दया कर देवे ता अमृत हर हस चखीए। मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे ते सागत नर जम कुटीए। ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया मन तिन के निट ना पिटीए। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटीए।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

मन आशा जियो गौड़ी माज मगन ला चौथा मेरा बिरगी ना मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत कर लीवा जियो मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा कर बाण जियो मेरा प्रीत मित्र कर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुड सुजान जियो हौ ना मिटो कुरबान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत साई जियो हर दसो संतो जी।

मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम, तुम संगीत, तू मेरी पत, तू है मेरा गहना, तुझ निप न जाई रहना, तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान, रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना, जय पेखो ता तू बसना, निरपो ना जपो तरा रसना, तू मेरी नवरे तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया, सा गुरते दृढ़िया एक एक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार, व्याप्त सुर्ग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेग शोभा, मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी, संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ, व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता, व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोबन मल मस्ता, व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार, व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार, श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध, मन सोया माया विस्माद, इस गृह में कोई जागत रहे, सावत वस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती, गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे, तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्टवा होते, हर कृपा मुझ सारंग पान, संतन तूर सरबन धान, साध पूजनी सदगुर संग, नानक जाग पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी हो रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

पलो समो सिमरन की परिया, सिमरत नाम है पार उतरिया रहाओ। नेत्र संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन में लेख, सुन कीर्तन साध पै जाए, जन मरण की त्रास मिट।

पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ। जेते जीते ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सूह कनेरे। जुग जवरते सब तेरा पाणा, हुगम बूझे सो सच समाणा। हर कृपा दीजे प्रदान, नानक सिमरे नाम निधान। गौड़ी महला पंजवां, ताका दिस पाई गे वड भागी। जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही। ताको दुख सुपने पी नाही, हर हाओ सरबन धन राखे जनमागे। ताके संग केल विख दुख जाहे, जनकी महिमा कसी न जाए। पार ब्रह्मज न रहया सुमाए, हर कृपा प्र बिनो सुनीजे। दास की तूर नानक को दीजे, गौड़ी महला पंजवां। हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड़ का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिव लागी।

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पनवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रलय निवारे ऐसा हार सरमो सब कोय सर्वकला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुद फल पाहे उद सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पनवा साती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सोपाय मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी महला पनवा तोती खोल विशाए हेठ, गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है, मुद पदार्थ नाम ते आई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना, चूरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कोत न संगे प्राणी।

शरण परे प्रब अंतर जामी नान कोट पकरी प्रब स्वामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर संग राते पाए ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

आगे बसन सुहेला एव संसार विकार से सेमय तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आए हारस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई विहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पौसु सेजे बौर न होए गो फेरा अंतरजामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास कई सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी मोहल्ला पंजवां राग पिता प्रा मेरे मुझे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच विखादी एक गरीबा रखो रख नहारे खेद करे अर बो संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारो अनक बो पाती छोड़े कतहु नाही एक बासुनता की ओटा साह संगम ने जाही कर कृपा संत मिले मुए तिनते तीर जपाया संती मन दियो मुए निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा विखादी सह सोहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते क्यों डरन कहां ते आया रखाओ एक मैल तू होए अफारो एक मैल ने मानो एक मैल तू आपे आपे एक मैल गरीब बानो एक मैल तू पंडित भगता एक मैल खल होता एक मैल तू सब ग्राहज एक मैल कछु न लेता ताड़ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन खा रो जाने जैसा पेक करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अंग कोठरी बहुत पद करिया आप हुआ रखवारा जैसे मैल राखे तैसे रहना क्या यो करे विचारा जिन किस किया सो ही जाने जिन ए सब साजी कहो नानक अपरंपर स्वामी कीमते अपने काजी गौड़ी महला पनवा छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ उर्ज रहो रे बावर गावर जो किरखे हरे आयो पसुआ रगाओ जो जाने तू अपने काज तो संग न चाले तेरे तसुआ नांगो आयो नांग सिदासी फेर फिर अरकाल गरसुआ पेख पेख रे कसुंभ की लीला राजमाच तिन हूं लो हसुआ शीत डोर दिन सा रहनी जी को काज न की नो कछुआ करत करत एही बरधानो हार उते तनखी नसुआ जो मोयो उन मोह नी बाला उसते कटे नहीं रोज चसुआ जग ऐसा मोय गुरे दिखायो तो शरण पर्यो तय गर्भसुआ मार प्र को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत घर जसुआ गौड़ी मोहल्ला पंजवा तुझ बिन कमन हमारा मेरे प्रीतम प्राण अधारा रगाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सजन सुहेले सरसुका मैं तुते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वर्ण न साको तुम रे रंगा गुण निदान सुखदाते हमें गोत्र प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते प्रम्पो काड किए ने केवल जपते हो मैं मारी जन्म मरण को चूको सहसा सा संग दृसारी चरण पखार करो गुरसेवा बार जब लखबरिया जे प्रसाद यो पौजल तरिया जन नानक प्रेसंग मिरिया गौड़ी महला पनवा तुझ बिन कमरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रगाओ स्वर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव करत सगल कर जोरे सरमया ठाकर तेरी दोही पतक पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल शीतलोही ज्ञान क्या नानक वड्याई संत रेसु गाल गलोही गौड़ी महला पनवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रगाओ अनक जोन बोझो नी प्रमया बौर बौर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है देहो दर्श घर राया सोई हुआ जुस पाना अवर न किन ही कीता तुमरे पाने परम मोहिम होया जागत न ही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पद प्यारे कृपा निध दयाला राख लेहो पिता प्रमेरे अनाथे कर प्रतपाला जिसनु तुम्हे दिखायो दर्शन साह संगत कै पाछे कर कृपा तूर दियो संतन की।

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर्प उजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुखे ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ताकी ओढ़ भी जय रे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड, हर ताको नाम ज पी जय रे रखाओ, मन की मत त्यागो हर जन, सुगम भूज सुख पाइये रे, तो प्रभ करे सोई फल मानो, सुगत ओई त्याई गे रे, ओढ़ पत ओधारे खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द पंजन स्वामी, जे पावित से निवाजे रे, सब को माल पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, तेंदे तोड़ नहीं से करते, पूरे और तनागर रे, जाग जाते नाम तेरा स्वामी, कड़कड़ अंतर सोई रे, नानक दाता की शरणाई, जाते बिरथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी, महला पंजवा, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, हर घर कबूरा मनो विसारे, ईगा उहा सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रत पारे रखाओ, महा कट काटे पीतर, रसना नाम पितारे, शीतल सांत सुखर सरणी, जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते रख, हजल पारे उतारे, चरण कमल आरा तुम मन में, जमकी त्रास बेदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगमे पारे, गुण गावत त्यात सुख सागर, जुए जन्म नगारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजे, नानक सत बरहारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुगना ही रे घर भगत बेना, जीत जन रतने मूर्ख, सा संगत जप एखे ना रहाओ, सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बो लोग भोग, हैबर गैबर राज रंग, जा चले गए मूड रंग, चुआ चंदन दे पूलिया, सो तन तरसंग रूलिया, मोय मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है, गौड़ी महला पंजवा, मान कर तरबे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ, कल कालक अंधियारिया, गुर ज्ञान दीप उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अत कनी, उबरे जब जब हर गुनी, मतवारो माया सोया, गुर पेड़त प्रम पखोया, कहो नानक एक तिहाया, काल कर नदरी आया, गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा तारी गुरे टेक रखाओ, अंग जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या, बगसी जो मिल एक नाम, सोग सहज आनंद विश्राम, प्रवके चाकर से पले, नानक तेन मुख उजले, गौड़ी महला पंजवा, जीरे ओला नाम का, अवर दे करन करामनो, तिन मैं पौ है जाम का रखाओ, अवर जतन नहीं पाई है, वडे पा घर त्याई है, लाख इकमती जानिए, आगे तिल नहीं मानिए, अंग बुद्ध कर्म कुमामने, ग्रे बालू नीर बगामने, प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले, गौड़ी महला पंजवा, बार ने बलिहार ने लख बरिया, नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया, रहाओ करन करावन तुही एक, जी जंद की तुही टेक, राज ओम प्रा तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुनी, ईगा ऊगा तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे, अंतर जामी प्रसुजान, नांग तकिया तुही तान, गौड़ी महला पंजवा, हर घर हर आरा दिए, संत संघर मन मसे, पर मोह पो सदिये रहाओ, वेद पुराण सिमरत पने, ता ऊच ब्राजत जन सुने, सगल स्थान पे पीत कीन, राम सेव कह रहत कीन, लख चौरासी जून फिरे, गोविंद लोकनी जन्म मरे, बाल बुस जान पहो में रही, हर सासरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाई है, नीत नीत घर सेवी है, सास हर त्याई है रखाओ, संत संघर मन मसे, दुख दर्द अनहेरा प्रमन से, संत प्रसाद हर जापी है, तो जन दुख ना व्यापी है, जाको गुरु हर मंत्र दे, तो उबरिया माया अगनते, नानको प्रमया कर, मेरे मन तन वसे नाम हर, गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम, ईगा सुख आनंद कना, आगे जी के संग काम रखाओ,
ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਜੋਗ, ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਾਉ ਕੋ ਪੀਰ ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਖਾਓ, ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ, ਤਾਕ ਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਤਨੀ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕੇ ਕਮੀ, ਕਰਨੇ ਘਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗੋ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ, ਬੇ ਬਰਚਿਤ ਬੇ ਸੰਤਨਾ, ਹੁਆਉ ਸਿਉ ਰੇਹਤਨੋ, ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਵਿਦੇ, ਇੰਦਰੀ ਵਸਲੇ ਜਿਤਨੋ, ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ, ਨਾਨ ਕੁਦਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਏ ਦਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਤਾਨ ਪ੍ਰੋਕਾ ਖਾਨਾ ਰਹਾਓ, ਐਸੋ ਹੈ ਰੇਖਸ ਹੁਆ ਮਾਰਾ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹ ਸਵਾਰਨ ਹਾਂ।

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को फिर लीना, तस कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बने आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया पुन, भजन राम चित को माई। उल्ले ओ मन समझाए, वेद पुराण साध मग सुनकर। निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की। बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान। तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो। जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहन मुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहया सुमाई, निकर व्याप रहया निचाई।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुखाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तरमय साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निरठाओ, प्रेम परायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्ब जंजाला, मनमुख चील कुष्ट बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सास सुमाए, जमण मरना ठाक रखाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे ओर, गुर पुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तारण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबाए।

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप पुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरणास दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरणास ले नहो बेदासा, दय संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बिचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साज भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस केस चांडूर ना कोई, राम न चीन्या अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाय, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुरनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैन से फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हृदय सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, पर पंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कबल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूट सुहर

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोल पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, रैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अफर काल कूड़ सिर मारे, निचल एक सच्चा ससोई।

आप हो जाओ, मानमुख सूतक कभे न जाए, जिचिर शब्द न भीजे हर कहे नाय, रहाओ सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सदगुर सेवे सूतक जाय, मरे न जन्मे काल न काय, सास्त सिमरत सो देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होय, जुग चारे ना उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाय, नानक गुरमुख रहे सुमाय, गौड़ी मोहल्ला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख सोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो हो में जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहु चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए भय नित्याना, जा पकड़िया तब की पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई।

अपराधी सीधे गुर के शब्द अंतर सहज रीधे मेरा प्रपाया गुर के शब्द सीधे सदगुर मेले प्रवया मिलाए मेरे प्रसाते कई मन पाए हर गुण गावे सहे सुपाए बिन गुर साते परम फुलाए मानव अंधे सदा भिख खाए जम डांड सहे सदा दुख पाए जमुआना जो है हर की शरणाई हो में मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सदगुर सेव है से जन निर्मल पवित्ता मन से मन मिलाए सब जग जीता इन बिल कुशल तेरे मेरे मीता सदगुरु सेवे सो फल पाए हिरदे नाम विच्चों आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए सदगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे पाई भगती सीधे

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह है, सो सजम मेरा मन चाह है, हर की प्रीत सदा संग चाल है, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल है, रहाओ बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड़ लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

पौड़ी ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन आपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आपे अस्थूला।

कै एक बखानन नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण धिटारं सगल पाद कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहेत टहेत अब टह परे साजना सरनाए दुके फाहे काटे नानक लिए सुमाए।

आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहू खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्बानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत स्यानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा स्यानप शाड एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक।

ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सदगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन मै मिटावो, सिमरो जास विश्वंपर एक, नाम जपत अगणत अनेक, वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, इन्ने राम नाम एक आखिर।

राम भक्त जना कई मन बस राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बस, प्रभ के सिमरन दुख जम नस, प्रभ के सिमरन काल पर हर, प्रभ के सिमरन दुश्मन टर, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अन दिन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्याप, प्रभ के सिमरन दुख न सुनताप, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्वनिधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप ता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तर्क है मानी, प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सबके सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह से बेमोहताज, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ज्ञान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिर चिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्र माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अद साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कशनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्ट, गर्भ गुमान न मन ते हुट, तोज करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, ए देही को बो साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल धोवे बो दे अनीत, दुध कहा होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका पो व्याप, अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे।

सगल कटा को देव उदान करण करावन हार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म सहित धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनेया तो प्रभु सदा सुमाल जिनकी अत चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी।

ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोड़ गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा को खा करे जे ठाकर सो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सो अपनी दे रास खाद पीत बरते अनदे उलास अपनी अमान कछ भौर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास।

काल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर कई कोट परदर्व को गिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभ तेत तेत लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बह कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस साधक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की है त्रिजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीव कई कोट जख किन्नर पसाच कई कोट भूत प्रेत तुकर मिर्गाच सब ते नेरे तहू ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजो नी फिरे कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट की ये तरवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तय तय रखे नानक सबज प्रभ कहे हाथे कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिल निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म रखनते कई कोट दर्शन प्रप्यास दिन को मिले ओ प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अव

प्रवते हुए प्रम है सुमात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सदसदी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्मरस तुग सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जलतल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो पावे सोई होग खिन में था व्योथा पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ पावे मानो गद पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे प्रभ पावे बिन सास्ते रख प्रभ पावे ता हर गुण पख प्रभ पावे ता पतत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप सुवामी खेले बिगसते अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या हो आवे जो तु पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तु पावे सोई करे अनजानत बिखिया में रच जे जानत अपने आप बच परमे पूला दर्द ताए।

नानक आ मिला मनहार, कभू नित करे बो पात, कभू सोए रहे दिन रात, कभू महा क्रोध विकराल, कभू सर्व की हो तरवाल, कभू होए बहे बड़ राजा, कभो पेखारी नीच का साजा, कभू अब कीर्त में आवे, कभू पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिल ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तड़ती स्नान, कभू सिद्ध साधक मोह ज्ञान, कभू कीड हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

ते बौर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान श्लोक, सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत, आप को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे, तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी हा मुक्त आगे सुख पावे, तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे, बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश, तब ते आप जाने बलवंत, इनमें हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी, पुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगे परवान, कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे, अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अंक जितन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे, आज को जो पला कहावे, किसे पलाई निकट न आवे, सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब को सुगुना ही कोए, जा ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नह चलना ही चीत, जब लग मो मग्न संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नार कहो छूटे, सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नेत्रवतावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, स्वपन मनोरथ बिरते सब काजे, नाम रंग सर्व सुखोय, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करामने आपे आप, सदा सदा

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी ताड़ कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुखन यार जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुट्टे संत के दुखन सब सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जून लवे संतन के दुखन सर्प जून पाए संत के दुखन त्रिगत जून किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को शले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संदोखी का थाओ को नागे नानक संत पावे ता वे पीगत पागे संत का निंदक मां अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा तेयारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित्र

रखे एको आप, मानुख तैकसि नाहीं हास, तिसका हुक्म बूझसो होय, तिसका नाम रख कंठ परोय, सिमर सिमर सिमर प्रसोय, नानक बिघन ना लागे कोय, उस्तुत मन में कर निरंकार, करमन मेरे सत व्यवहार, निर्मल सुना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग दिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपगे हर बिंद, कर घर कर्म श्रमण घर कथा, हर दर गए नानक उज्जल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, चेतनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, ये तुझकी यो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक ते निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजे, तुझकी जानो तिसना बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन

अनद रूप मंगल सदजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुणमय जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख कर एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गत मित कोई ना लखे प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी में कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृटाया नाम तन नम रूप रंग नम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मन तन नामे नाम सुमाने।

अंत मन में चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण सन टहल कमाई है नानक यो संगम प्राप्त कृपा पाई है श्लोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोविंद न जानिए नानक सब समाद पौड़ी एकासी निविट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर राम मन संतोख सर्व जी दया इन वेद वर्त संपूर्ण पया तावत मन राखे इकठाए मन तन शुद्ध जपत हरनाए सब मैं पूर है पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एह धर्म श्लोक दुर्मत हरी सेवा करी भेटे सद कृपाल नानक प्रसु मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की पद करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग कोमल बाणी सबको संतोख है पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है गुर पूरे ते ए नह चौपाइये नानक राम रमत फिर जोन न आइये श्लोक तीन गुणा में व्यापया पूर्ण होत न काम पतत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौसी तीन ताप संसार आपत जात नरक अवतार हर घर भजन न मन में आयो सुख सागर प्रभ निख न गायो हर शोक का देख कर बध्यो दीर्घ रोप माया असाध्यो दिने पकार कर सुन पायो नैनी नींद स्वप्न बरड़ायो हर विसरत होवत ए हाल सर नांग प्रपुरख दयाल श्लोक चार कुंट चौदे पवन सगल व्याप्त राम नानक पून ना देखी है पूर्णता के काम पौड़ी चौदे चार कुंट प्रव्याप सगल पवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरण आकाश हमे प्रापेख जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर ते बसे दयाल सूक्ष्म अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पछान श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिन सी चिंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी पय संतोख दिया गुरदेव मंतन शीतल सांत सहज लागा प्रभ की सेव टूटे बंधन बहु विकार सबल पूर्णता के काम दुर्मत मिटी होम में छुटी सिमरत हर को नाम शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवा गमन आप तरिया कुटम्ब सिंह गुण गोविंद प्रभ रमन हर की टहल कमावनी जप गए प्रभ का नाम गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम श्लोक पूर्ण कभू ना डोलता पूरा किया प्रवे आप दिन दिन चढ़े सुवाया नानक होत ना काट पौड़ी पूर्ण मा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख तभी ऊपर जा का हथ गुण निधान गोविंद गुर किया जा का होय अंतरजामी प्रसुजान अलख निरंजन सोय पार ब्रह्म परमेश्वर सबिद जानन हार संत सहाई शरण जोग आड़ पैर नमस्कार अकथ कथा न बुझिए सिमरो हर के चरण पतत उदाहरण अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण श्लोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेशे को दृढ़ जिसका हुए उधार किलवे काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए फलत पलत मुख उजला न पोहे तुमाए तो सुरता सो बैसनो तो ज्ञानी तनवंत तो सूरा कुलवंत सोए जिन पढ़या भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद बैस उदरे सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रव्यापना नानक तिसहिरवाल।

करे, सच्चा सर्प तारक है, सदा सदा रावे, जो उबली मजीठे रंग गह गह, त्यो सच्चे नो जियो दे, रंग चलू ले अतरती, सच्चे सू लगा ने हो, कूड़ ठगी गुजी नार है, कूड़ मुलम्मा प्रेट तरे हो, कूड़ी करन वड़ाइया, कूड़े सू लगा ने हो, नानक सच्चा आप है, आपे नदर करे महला चौथा, सत्संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारे, ओए पुरख प्राणी तन जान है, उपदेश करे परे उपकारे, हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारे, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारे, तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारे, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिर जनहारे, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिसकारा मोह जम मारे, अगे पिछे ढोई नाही, गुर सिखी मन विचारे, सतगुरु नू मिले सही जन उबरे, जिन गिरदे नाम सुमारे, जन नानक के गुर सिख पुत हो, हर जप्यो हर निस्तारे, महला तीजा, होमे जगत पुलाया, दुरमत बिखिया बेकार, सतगुरु मिले तन नदर होए, मनमुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनू शब्द लाए प्यार पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, तो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी एक मन एक अराध्या, इनका कंधन कब हो छिजे, तन तन पुर सावास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा, से मान सच्ची दरग है लिजे, तन तनम जन सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे, श्लोक महला चौथा, सागत जाए निवे गुर आगे, मन खोटे कूड़ कूड़ियारे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाए कुसर बगलारे, गुर सिखा अंदर सद गुर वरत, चुन कड्डे लद्दो वारे, वे अगे पिछे बह मोश पायन, न रलनी खोटे यारे, ओना दा पाख सो उथे नाही, जाए कूड़ लैन पेड़ारे, जे सागत नर खावाइये लोचिए, बेख कड्डे मुख ओलारे, हर सागत सेती संग न करियो, वे मारे सृजनहारे, जिसका यो खेल सोई कर वेख, जन नानक नाम सुमारे, महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर घर और तारिया, सगुरु नो अपड़ कोई न सकई, जिस वाल सिर जिनगारिया, सगुरु का खड़क संजोहर भगत है, जिद काल कंटक मार वडारिया, सगुरु का रखण हारा हर आप है, सगुरु के पिछे हर सा व्योबारिया, जो मंदा चितवे पूरे सतगुरु का, तो आप यो पामन हारे मारिया, ए गल होवे हर दरगे सच्चे की, जन नानक अगम विचारिया पौड़ी, सर सुत्या जिनी अरध्या, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग में जानिए, जो गुरमुख सच रवे, होंबलेगा रीतिन कौ, जे अनदन सच लवे, जिन मनतान सच्चा पामदा, से सच्ची दर गए गवे, जन नानक बोले सच नाम, सच सच्चा सदा नवे, श्लोक महला चौथा, क्या समणा क्या जागना, गुरमुख ते प्रमाण, जिन्ना साध ग्रासना विसर, से पूरे पुरख प्रधान, कर्मी सद गुर पाईए, अनदन लग गए ध्यान, इनकी संगत मिल रहा, दरगे पाई मान, सौंदे वाहो वाह उच्चर, उड़दे पी वाहो करेन, नानक ते मुकुजले, जे नित उठ समालेन, महला चौथा, सतगुर सेव गए अपना, पाइए नाम अपार, भौजल डुबद्या कढ़ लै, हर दाद करे दातार, तन तन से सहा है, जे नाम करे वापार, वणजारे सिख आमदे, शब्द लंघावनहार, जन नानक जिन को कृपा पई,
तिन सेवा सिरजनहार पौड़ी। स सच्चे के जन भगत है, स सच्चा जिनी आराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया, तिन अंदरों की सच लाध्या। सच साहेब सच जिनी सेवया, काल कंटक मार तिनी साध्या। स सच्चा सब दू वड्डा है, सच सेवन से सच रलाध्या। स सच्चे नू सावास है, स सच्चा से फला दया। श्लोक महला चौथा। मनमुख प्राणी मुग्ध है, नामहीन परमाए, बिन गुरमन वहां ना टिके, फिर जून नी पाए। हर प्रवे आप दयाल होवे, न सदगुर मिलया आए। जन नानक नाम सलाहे तू, जन्म मरण दुख जाए। महला चौथा। गुरसाला ही अपना, बोबद रंग सुपाए, सतगुर से ती मन रखता, रखिया बणत बनाए। जेवा सलाए ना रजई, हर प्रीतम चित लाए। नानक नावे की मन भुख है, मन तृप्त है, हर सखाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाइया। सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वडियाइया। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाईया। जा मिलिया पूरा सतगुरु, ता हाजर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाया, तिना भुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मंत्र खोज खोजिंदिया, सो प्रभ लत्ता लोड़, विष्ट गुरु मैं पाया। जिन हर प्रा दित्ता जोड़, महला तीजा। माया तारी अद अन्ना बोला, शब्द न सुनी बौरोल कचोला। गुरमुख जापे शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मने हर नाम सुमाए। जो तु पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी। तू करता सब कुछ जानदा, जो जिया अंदर वरत। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बणत। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलत। सतगुर नू मिले सो हर मिले, नाही किसे परत। श्लोक महला चौथा। यो मनुआ दृढ़ कर रखीए, गुरमुख लाई गए चित। क्यों साध ग्रास विसारीए, बहद्या उड़द्या नित। मरण जीवन की चिंता गई, यो जीड़ा अगर प्रावस। ज्यों पावे त्यों रख तू, जन नानक ना बख्स। महला तीजा। मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे। सदा बुलाइए महल ना आवे, क्यों कर दर गए सीजे। सतगुर का माहिर विरला जाने, सदा रहे कर जोड़। अपनी कृपा करे घर मेरा, नानक लय बहोड़ पौड़ी। सा सेवा कीती सब लगे, जित सतगुर का मन मने। जा सतगुर का मन मनिया, ता पाप संमल भन्ने। उपदेज दिता सतगुरु, तो सुनिया सिखी कन्ने। जे सतगुर का पाणा मनिया, इन चढ़ी चवक गुण मने। ये चाल नरा ली गुरमुखी, गुर दिखिया सुन मन पिन्ने। श्लोक महला तीजा। जिन गुर को प्याया अपना, जिठाओ ना ठाओ। हलत पलत दो में गए, दर गए ना गीताओ। ओ वेला हथ न आवई, फिर सतगुर लग गए पाए। सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख वेगाए। सतगुर पुरख निर्वय रहे, आपे ले जिस लाए। नानक दर्शन जिना वखा लियोन, तिना दरगे ले छिड़ाए। महला तीजा। मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुगे मतगारी। कूड़क सत ओ पाप कुमावे, क्या ओ सुने क्या आग सुनावे। अन्ना बोला कोई उजड़ पाए, मनमुख अंधा आवे जाए। बिन सतगुर भेटे थाए न पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है, से बहे न सतगुर पास। उथे सच वरतदा, कूड़ियारा चित उदास। वे वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। वे सच्चे कूड़ न गड्डई,
ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ, ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿਅਨ, ਕਰ ਆਪੇ ਆਹਾਰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ, ਵਰਤੇ ਸਭ ਜਹਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁੰਡੋਂ ਪੁੱਲੇ ਮੁੰਡ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਨਿਹੱਥ ਤਿਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਕਰਨ ਕਰ ਸਮਰੱਥ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੱਕੇ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ, ਸੰਨੀ ਤੇਲ ਵਿਖਮਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦਮਾਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ, ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸੇਈ ਪਰਵਾਨ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਨ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਚ ਪਚ ਮੋਏ ਅਜਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

तपे तरम हारिया भाई ए तपा ना हो भी बगला है भय साधना विचारिया सतपुरख की तपा निंदा करे संसारे की।

मन मंत तन से सेई नानका पूर्ण सोई संत महला पंजवा अठे पैर पौंदा फिरे खामन संदड़े सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जा चित न होए रसूल पौड़ी तिसे सरेव प्राणी हो जिसदे ना हो पल्ले ऐथे रहो सहेलिया अगे नाल चले कार बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल ओट लयो नारायण दीन दुनिया चले नानक पकड़े चरण हर तेस दर गए मल्ले श्लोक महला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारिया देवन हार दातार मैं नित चितारिया निखुट न जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तेना सब किश सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ न पाई है फिर ना ही मरने जिसनु आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचरे साध जान अम्यो चले चरणे पेख दर्शन नानक जीवया मन अंदर करने श्लोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कार्ज आवे रास महला पंजवा जे सिमरत संकट छुट है अंध मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर निमख ना विसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लद्दा साधा सरणी जो पवे सो छुट्टे बद्दा गुण गावे अबनासीए जोन गर्भ ना दद्दा गुर पेटिया पार ब्रह्म हर पाड़ बुझ समद्दा।

हर हर बास सुगंध बसाई तहर कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी ते पदे चार तुके जम ते उल्ट पए है राम दुख बिनसे सो कियो बिसराम बैरी उल्ट पए है मीता सागत उल्ट सुजन पै चीता अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया साध पई जब गोबिंद जाने आ रहा तन मैं होती कोड उपाद उल्ट पई सुख सहज समाध आप शाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनों ताप तब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समाव आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह दराता जिन राम जानिया तिने पछानिया जो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथे बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बौर ना करना सो पद रवो जे बौर ना रवना सो त्यान करो जे बौर ना तरना ऐसे मरो जे बौर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नावो।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। दिखया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। सनकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तां छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मनलीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम ना पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर दूर।

साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए, अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर पुकार, काढ लीन सागर संसार, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत, माया तप्त बुझिया अंगयार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई, कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रघाओ, नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रमणी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई, फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई, कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने न होई गौड़ी, झगड़ा एक न बेरहो राम, जो तुम अपने जन सो काम, रहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कह रामे जानिया, ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जाते आया, कहे कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास, अराग गौड़ी चेती देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, सवे उड़ानी प्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी, रहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा तिसना शान परी तारी ऊपर, दुर्मद पांडा फूटा आंधी पाचे जो जल बरख, ते तेरा जन पीना, कहे कबीर मन पया परगासा, उदय पान जब चीना, गौड़ी चेती एक ओंकार, सदगुर प्रसाद हर जस सुने

टलता चल आप गए और न हूँ काले शाड़ को चर्चा आन न जाने ब्रह्मा हूँ को कयो न माने आप गए और न हूँ खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे आवर नभस्त

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थम्भ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

तरखर रिसे गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्टना पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए ज्योत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास।

त्यावेतर जी छे जन जुग में सुखवासी छे मुक्त पै जिन हर ताया जियो तेन टूटी जम की वासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापे जपे बेअंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरखे परंपर करता जी तुझे अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृज सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई।

नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवत है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उड़दिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ सिख सबादी क्या का पाओ गुरमुख सोनना साचा नाओ नानक आखण मेरा वेर ए तरंग नाचो रख रख पैर आसा महला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदले दैसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ जी उपाय जुत खत कीनी काली नत क्या वड्डा पाया किस तू पुरख चोरू कौन कही है सर्व निरंतर रव रहया नाल कुटंब सास वरदाता ब्रह्मा पालन सिट गया आगे अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा पया रत्न उपाय तरे खीर मथया होर पगलाए जे असी किया कहे नानक छपे क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल विस्तारी आराम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाह दवाजे शब्द निरंजन किया करे विखियान जाने जे कोई अमृत पीवे सोई रहाओ जिन पिया से मस्त पय है टूटे बंधन फाहे ज्योति जो सुमानी पीतर ता छोडे माया के लाहे सर्व जोत रूप तेरा देखया सगल पवन तेरी माया हरारे रूप निरालम बैठा नदर करे विच छाया बीना शब्द बजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो तो रता नानक कहे विचारा आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार।

मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवे चिलावे राग रतन परियां परवार तेस विच उपजे अमृत सार नानक करते का यो तनमाल जे को बुझे यो विचार आसा मोहल्ला पहला कर कृपा अपने कर आया ता मन सगियां काज रचाया खेल देख मन अंध पाया सहो भी आने आया गावो गावो कामणी बबेक विचार हमरे कर आया।

परमल रूप उजल मोती चुगे हंस सर्व कला जग दिसे अंश जो दिसे सो उपजे बिनसे बिन जल सरवर कमल न दिसे रहाओ बिरला बूझे पावे भेद साखा तीन कहे नित बेद नाद बिंद की सुरत सुमाए सदगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा दिगसंतो जे तू राखे किरपा तार बूढ़त पाहन तार तार तिर पौन मैं जोत तिर पौन मैं जानिया उल्ट पई कर कर मैं आनिया अहंस भगत करे लिवलाए नानक तिनके लागे पाए आसा महला पहला गुरमत साची हुजर दूर बहुत सियाणप लागे तूर लागी महल मिटे सजनाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए हाय हजूर हाजर अरदास दुख सुसाच करते प्रपास रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे कैन कसन वारा नहीं आवे क्या देखा सूझ बूझ न पावे बिन नावे मन तृप्त न आवे।

सबना का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई रहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने अराग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर के दर्शन सदा सुखोए गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर जमकाल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे पूरे गुर के शब्द समाहे रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम खाने साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जागे मन निर्मल साचे शब्द समाहे सेवड़ फागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहण न जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई चिरी मुछुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द बखाने कोए विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गद पाए आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर सेवत ही सुसां शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर रंग लाए तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए हर का नाम मन वसाए हर पर सदा रहा भरपूर आपे नेड़े आपे दूर आखने आखे बके सब कोए आपे भविष्य मिलाए सोए कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए गुरमुख विचो आप गवाए हर रंग राते मोह चुकाए अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवार नहार आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया सदगुर सेवे सोजी होए दूजे पाए न लागे कोए मूल लागे सृजन प्रमाण अन दिन राम नाम जब हिरदे कुर शब्दी घर एको जान रखाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए गुर की सेवा सदा सुपाए संत संगत मेल हर गुण गाए नामे नाम करे विचार आप तरे कुल उदरन हार गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ। ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ। ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸਬਾਈ। ਸੌ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਵਾਸ। ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਸੋ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ

सोई जन जान हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सु पाया सहजेगी कर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होय एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग आसा कर दूजा महला चौथा किसी तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई किसी तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई किसी तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई हमारा तड़ा रहया सुनाई हम हरसों तड़ा किया मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई हौ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिनसो तड़े करे से जागे चूड़ तड़े कर पछोतागे फिर ना रह मन खोड़ कुमागे हम हरसों तड़ा किया इसका कोई सुमरथ ना है ये सब तड़े माया मोह पसारी माया को लूजे गावारी जन्म मरे जुए बाजी गारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में जाए जिसनु कृपा करे तेस सत्संग मिलाए हमारा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तड़े बे पावे पराया शिद्र अटकले अपना अहंकार बदावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर तड़ा धर्म साब से टिजने आवे आसा महला चौथा हिरदे सुन सुन अमृत पाया गुरबाणी हर लख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी पैना एक और अवर आ कट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बैना रहाओ मैं मंत्र प्रेम महाबैराग सगुर पुख पाया वड पाग दूजे पाए पवे बिकमाया पाग ही नहीं सदगुर पाया अमृत हर रस हर आप पियाया गुर पूरे नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरे मंत्र प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुसार नाम जपो मेरे सज्जन सेना नाम बिना में अवर ना कोई वड़े पाग गुरमुखर लेना रहाओ नाम बिना नहीं जीव्या जाए वड़े पाग गुरमुखर पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सतगुर नाम दड़ाया रस गाए गुण परमानंदा रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा वड़े भाग पाए हर निरजोगा गुण विगुण माया मलतारी वेण गुण जन्म मोए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत अद कढ़िए आसा महला चौथा नाम सुनी ना मुंह मन पावे वड़े पाग गुरमुख कर पावे नाम जपो गुरमुख परगासा नाम बिना में तर नहीं काई नाम रव्या सब साज ग्रासा रहाओ नाम में सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे तो मेरा मीत सखाई नाम गीन गए मूड नंगा पच पच मुए देख पतंगा।

नानक नाम देवे घर आपे, आसा मोहल्ला चौथा, गुरमुख हर घर वेल वधाई, हर लागे हर रस करसाई, हर घर नाम जप अंत तदरंगा, जप जप नाम गुरमुख सा लागी, मारिया काल जम कंकर पोयंगा रखाओ, हर घर गुरु में भगत रखाई, गुर तुठा सिख देवे मेरे पाई, होमे कर्म किस बेद नहीं जाने, ज्यो कुंतरन आए खाग श्री शान, जे बड़ पाग होवे बड़ ऊचे, नानक नाम जपे सा सूचे, आसा मोहल्ला चौथा, हर घर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त मेरे पाई, नाम जपो मेरे गुर सुख मीता, नाम जपो नामे सुख पावो, नाम रखो गुरमत मन तीता रहाओ, नमो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाल है गुरमत बिगसा, ना बिना कुश्ती मो अंधा, सब ने पर कर्म किए दुख तंदा, हर घर हर जा जपे बड़ पागी, नानक गुरमत नाम ले लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, महला चौथा राग आसा कर छेवें के तिन, हथ कर तंत्र जावे जोगी, थोतर वाजे बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, यो मनुआ हर अंग पेन, जोगी हर देव मती उपदेश, जोग जोग हर घर एक वर्त।

परदेश त्याग सौदे को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन ओ मन लपटानी, सह व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ो सौदा कराए, रहाओ सहे पठाया सहे पास, अमोल रतन अमोला रास।

तारी सगल जगत गृह ऐसा गए सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल बिंजन भोजन अंग प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन ही त्रापे तृष्णा ना जायस बिन मिलबे इहो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरियो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मन तृप्ताया प्रमिलया ता चूकी डंजा नानक लद्दा।

बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्रूप सुजान बचकन आत गर्भ मुए फाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे भोगे भोग आचार करे शोभा मैं लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन

इन ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देहारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन से मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ चार पैर क्यों जुगे समाने, रैन पही तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, प्रम प्र रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा मोहल्ला पंजवा, हर सेवा में परम निदान, हर सेवा मुखे अमृत नाम। हर मेरा साथी संग सहाई, दो सो सिमरी।

पंजवा हर हस चोट होशे रसमाता करमय वस्त बार उड़ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुणे अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम तरम ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नाही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छिड़ाए प्रीतम स्यों मेरो

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सामीता झूठा इओ पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खाब खा मोए गवारा।

त्रो सबनिक से जबका दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मलत होवे प्राई अपना की तापावे ई हां सुख नहीं दरगे टोई जम पुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच न सके काहू बाते आगे ठौर न पाया रहाओ किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा तहां बेगूता ते कोई न रखे ओ किस पे करे बुकारा निंदकी गत तथु नागी खसमे ए वे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना संतन टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सगाई कहो नानक संत खरा रखे निंदक दिगे रुढ़ाई आसा महला पंजवा बाहर तोय अंतर मल मैला दोए ठौर अपने खोए ईहां काम क्रोध मुए व्यापया आगे मुस मुस रोए गोंद पजन की मत है होरा वर्मी मारी साप न मरी नाम न सुई डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तरकन लागा तत् योग न पछाने उगर गया जैसे खोटा टबुआ नदर सराफा आया अंतर जामी सब के जाने उसते कहां छुपाया कूड़ कपट बंच ने मुनियादा बिनस गया तद काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा महला पंजवा उदम करत होवे मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वस गद रख मन में एक अंकारे तेरा जान निरत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनगद शब्द वजावे रखाओ प्रथमे मन पर बोध अपना पाछे अवर री जावे राम नाम जप हृदय जप मुक्ते सगल सुनावे पर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लै सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसा महला पंजवा अदम चंडाली पई ब्रह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लैबर बूजी खाई रे घर की बलाई अबर सखाई मूसा देख डराई रे अज के वस गुर कीनो केहर कुकर तने लगाई रे हरहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया।

सुन कर भजन तुम्हारे सतगुर मंतन मेरा ठार थियो अरहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग यो काय तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गए प्रा तुमरे है जे विखया पई कियो सुख निधान नाम प्रा तुमरा यो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा में सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेर लियो तन सो कलयुग सा संकीर्तन गाई है नानक नाम आधार हीओ आसा महला पंजवा आगे ही ते सब किशुआ अवर के जाने ज्ञाना पूर चूक अपना बार्ग बक्सेया पार ब्रह्म भगवाना।

नरक स्वर्ग फिर अवतार गृहस्त में चिंत उदास अंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभु कृपा ते मन से आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संघर कीर्तन गाइए ये वो स्थान गुरु ते पाईए रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बार फन सूखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे सो नाम जपे जो जन भावे रखाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत कहे दुख डेरा हुक्म बूझे सोई पर।

और पूरे के चरण गए, और जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना हीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप। आसा महला पंजवा, आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया। आसा महला पंजवा, उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर मना साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी। आसा महला पंजवा, हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर किरपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए। आसा महला पंजवा, जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, आत निर्मल दास की जुगता, हरहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा। आसा महला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंधकूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसन्न आई, ईहां सुख आगे।

ते आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, हरहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न साके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम हृदय मैं दीजे। आसा महला पंजवा, मन तृप्तानु मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण, तो भेटिया निर्भय तनी, हरहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिड़गी भूख महा विकराल, ठाकुर अपने की नी दात, जल बुझी मन हो ही सांत, मिट गई पाल मन सह सुमाना, नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा, ठाकुर स्यों जाकी बने आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, पशु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत दिलशत देवन को, हरहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानुख की को केत चलाई, जाकी सेवा दस अष्ट सिधाई, पालक दिष्ट ताकी लागो पाई, जाको दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिनकामी। आसा महला पंजवा, जो मैं अपना सदगुर त्याया, तब मेरे मन मां सुख पाया, मिट गई गणत बनास्यो संसा, नाम रते

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट हय रेजा का अपाग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचर

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा, गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी, संत रविता से हर घर त्याय, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए। रहाओ संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित तनाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रसिमरो एक, गद पाएगे गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा, नाम जबत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया, जिस

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी ए रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

ओंकार सदगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब किसद सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रजाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सुख पाई है जे लह कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेब ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो एकन चसा यो कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहरतन अंतर सो छूटे महाजालते जिल गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार हो आज युगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावो सत सदा हर हर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक के संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसे हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेख मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर ना बिहूनड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पसरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो ना टहंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रापाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जानो मूल साई देया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा साहा नानक की लोचा पूर सचे पात सह आसा महला पंजवा पूर रहा सर्वठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुम अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठाए आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना चूरिए

वंजन वहन्दे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोय न किसी संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौजल तरबी है।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्म ना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन

आवे, सेवक कौ निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे, रहाओ तिस सेवक के हो बलिहारी जो अपने प्रभावे, तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे। आसा कर ग्यारवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ पे दिखावे बहु विद जैसा है ओ तै सारे अनक जोन प्रम्यो प्रम पीतर सुखे नाही परवे सारे साजन संत हमारे मीता बिन हर हर अनीता रे सा संग मिल हर गुण।

भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा महला पंजवा आगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम काल युग उधारिया गुरदेव मालमूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृष्ट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए सजुग त्रेता द्वापर पणिए काल युग ऊतमो जुगा माहे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने हे परग

मो कुटुंब बिखे रसमत मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारथ हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जुगता रखो संत संगाहे।

मैं टेक आधार तू दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही भगत तेरी हैरान दर्द गवावगी दरगे नाम हदूर गुरमुख जान सी वेला सज परवान शब्द पछाण सी सत संतोख कर पाओ उस हर नाम से मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे

नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया, आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिर नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सदगुर साधना सेवया हर भगत न पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाए, आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मिटे जप नाम मुरारे, नानक नाम न ना विसरे पूरा गुर तारे, आसा महला तीजा अष्टपदिया कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद।

आस तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुकम ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वसे सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साज कहे विचार हर का नाम रखे उर तार हर भगती राते मुख द्वार आसा मोहल्ला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मे बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागावे सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावे भुख न जाई नामे तिसना अगन बुझे नाम मिले तसे रजाई अरहाओ कल कीर्त शब्द पछान एहा भगत चूके अवमान सतगुर सेवे होवे परवान जिन आसा कीती तिसनो जान किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए कर कृपा नामा नमसाए त्यो सर दीजे आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तय आप कराए आपे गुरमुख नाम साए आप पुलावे आप मार्ग पाए सच्चे शब्द सच सुमाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मानमुख मोहे परम भूलाणी बिन नावे सब फिरे बौराणी तीन पवन में एक का माया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया वो कर्म कमावे दुख सबाया सतगुर सेव सदा सो पाया अमृत मीठा शब्द विचार अंदर भोगे हो में मार तेज आनंद कृपा तार नाम रते सदा सच प्यार हर जा पढ़िए गुर शब्द विचार हर जा पढ़ गए हो।

तन मन शीतल मुख उजले, पिर कै पाए प्यार, से सुखाली पिर रवे, हो में तिसना मार, तर कृपा कर आया, गुर के हेत अपार, वर पाया सुहागणी, केवल एक मुरार, सबे गुने बगसाए लयोन, मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

आत सहित सुख के सब हाट, सा व्यापारी एक थाट, जे जिया डन को लय न जगात, सगुर कर दीनी तुर की शाप, वखर नाम लड़खेब चिलावो, लै लाह गुरम कर आव, सदगुर साहो सिख बन जारे, पूंजी नाम लेखा साज सुमारे, सो वस्ते इत कर

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास तनी चितवत अनग प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चलतो पेकी है नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरयो ते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरघड़े तार चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार दिखिया के फीके।

जीवन दर्द दिखाए, जो जी तोते बिछरे प्यारे, जन्म मरे बिख खाए, जिस तू मिले सो मिले प्यारे, तिसके लागो पाए, जो सुख दर्शन।

सो करी प्यारे आवर किश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे जे चपिए घर नाओ, साई कार कमावनी प्यारे पुर मस्तक लेख लिखाए, एको आप वर्तदा प्यारे घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उधर ले प्यारे नानक हर सरनाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिट जिन साजी, सबना साहेब एक पया सेव तरे चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे तेस सिर लेख न होई, ऊड़े उमा ताकी कीजे जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे जिन्नी सच कमाया, नंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने आहो में कहे न कोई, कक्का केस पुंडर जब हुए विन साबूने उजलिया, जमराजे के हेरू आए माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बंधया अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जिन छोड़ी गली गोविंद गर्व पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी प्याड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे ताले शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने इन बिद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाई ने आपे तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया जजे जान मंगत जन जाच, लग चौरासी पीह पवया, एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुकम चिलाए ज्यो जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही, एको रब रहा सब थाई एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी तड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना भाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा, चित लागा सेई जा निस्तरे तौ प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी जो किश होआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव सर्ब निरंतर रब रहया, टड्डे टाए उसारे आपे यो तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए तिस निस्तारे, जा को नदर करे अनाणे रबत रहे काटे अंतर, हर गुण गावे सोई आपे आ मिलाए करता पुनरप जन्म न हो।

भगत भाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सोहर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तेन ससदा जो हर गुण गावे। हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किसे जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाण। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले। मन सियाण पछोडी है गुर का शब्द समाले। साह तेरे सो सो सदा है एक खिन।

तेरा गंढ लागे गुरमंग सदा समाले। इयों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने करबसया आए नाम हिया जे नाम ले नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहितन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। इयों कहे नानक सतगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग माण। मूल पछाणे ता सो जाण है मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाण है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान इयों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गारब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। इयों कहे नानक मन तू गारब अटिया गारब लदया जावे। मन तू मत मान करे ते हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलखो हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। इयों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे सेजन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। इयों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले किन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। किन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई इनकी गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुक्म तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। इयों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुद परम भुलाए। सच्चे मेरे साहेबा सच्ची तेरी वडियाई तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी तेरी कुदरत कहण ना जाई। सच्ची तेरी वडियाई जा को तुद मन वसाई सदा तेरे गुण गावे तेरे गुण गावे जंत पावे। सच्चे स्यों चित लावे जिसनु तू आपे मिल है सो गुरमुख रहे सो।

ताकीगत कही ना जाई अमित वड्याई। मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार अपरंपर। आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे, कही है जो तुद आख मखाने। जिसनु नजर करे तू अपनी, सो गुरमुख करे विचार जियो। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख परंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर, सब मैं रहा समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख। अदृष्टया गोचर गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहे दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निधान जियो। हर हर प्राप्त एको अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान, तो देवड अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरते, तू आपे करे सोई। हर समय रविया एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निधान जियो। तब तू है करता सब तेरी वड्याई, जो भावे तिवे चलाए जियो। तुद आपे भावे तिवे चलावे, सब तेरे शब्द सुमाए जियो। सब शब्द सुमावे जंत भावे, तेरे शब्द वड्याई। गुरमुख बुद्ध पाइगे आप गवाइये, शब्द रहा सुमाई। तेरा शब्द अगोच गुरमुख पाइये ना।

प्रयो सह सुभाई छोड़ न जाई, मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा, ज्यों राती जल माशली त्यों राम रसमाते राम राजे। गुरपूरे उपदेसया जीवन गद पाते राम राजे, जीवन गद स्वामी अंतर जामी आप लिगे लड़ लाए। रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कत हो जाए, प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताज की मिटे ना दाते। जल संग राती माशली नान कर माते,

रचायो नंगे आमन जामने आ, फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो किती है। ओ नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे मन लाले दीजे भोग करीजे हाव खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिले ओ मित्र चिराने। गुरथिया साखी ता डिठम आखी फिर जे अवर ना दिसे को नानक शांत दयाल मोहन के मन हर चरण गहीजे। ऐसी मन प्रीत कीजे आसा महला पंजवा सलोक बन में फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जाप हर पाया मन माहे। शंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोड आराध्य ज्ञानी जाप जपे जब ताल संजम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गमन बसदा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बनते न पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिशन अवतार शंकर जटा तार क्या है तुझे दयार मन न रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूर्क प्रथनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे यख किन्नर गुणपणी कोड इंदर अनेक देवा जप्त स्वामी जय जयकार। अराथ नाथ दयाल नानक साल संगत मिल उधार कोड देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनक पात गोवत प्रगट जा को आराध्य पौन पानी दिन सरात। नखेत्र ससियर सूर त्यावे बद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतर बेत।

चरण तुम्हारी शरण सिद्ध, हर चरण कारण कर्ण स्वामी, पतत उदन हर हरे, सागर संसार पावे उतार, नाम सिमरत बहुतरे, आद अंत व्यंत खोजे, सुनी उदरन संसंग विदे, नाग पयम पे चरण जंपे, ओढ़ गई गोपाल दयाल कृपा निधे, भगत वचिल हर बिरद आप बनाया, जय जय संत आराध्य तह तह प्रगटाया, प्रभु आप लिए समाये सह सुपाय, भक्त कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल, सर्व दुख विसारिया, चमत्कार प्रकाश दह दिस एक तह दृष्टाया, नाक पयम पै चरण जंपे, भगत वशल हर बिरद आप बनाया, आसा महला पंजवा, तिर संतन सुहाग मरे ना जावे, जाके ग्रेव हर ना हो सो सदगी रावे, अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला, न दूर सदा हदूर ठाकुर दैज पूर्ण ससद, प्राण पत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम पावे, नानक बखाने गुरबजन जाने फिर संतन सोहाक मरे ना जावे, जाको राम पतार ताके अंध कणा, सुखवंती सानार सोभा पूर बना, मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु, सर्व सिद्ध नव निद तिद करे नहीं ऊना सब कशु, मदरबानी तेरे मानी फिर सुहागता का बना, नानक वखाने गुर भजन जाने, जाको राम पतार ताके अंध कणा, आओ सखी संत पास सेवा लागी है, पीसो चरण पखार आप त्यागी है, तया मिटे संताप आप ने जान आई है, शरण गही जे मान लीजे करे सो सुख पाई है, कर दास दासी तज उदासी कर जोड़ दिन रहन जागी है, नानक वखाने गुर बचन जाने, आओ सखी संत पास सेवा लागी है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लग गया, परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्याग गया, मन शांत सहज सुभाव उठ अंत मंगल गुण गाया, नानक वखाने गुर भजन जाने, जाके मस्तक पाक से सेवा लाया, आसा महला पंजवा श्लोक, हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल, चंत मिलो संतन के संग।

बिनोद आनंद माया अज्ञानता लवटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लगत रहो ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे तायो आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुख हरनायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ होना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीक उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावे बज कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपो पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंद पजाणिया गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गहे रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोध साधु हर जय जय नानक नाम ते आए पूर्ण सा संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़कड़ वासी आप विरले किने लया जलसल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमानिया आद अंते मसोई गुरप्रसाद दी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान कराव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मल होड़ी दा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिन सुभागे, मिलनहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमें चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

अंधी रित ज्ञान विहूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत

करना कियो कर आपे ही ते तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है आपन हथी अपना आपे ही काशवारी है। श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडी है।

जे एक अध चंगी करे दूजी पी वे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए होरमत तिसनु अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुरक करेगा, अपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुरक जे होएगा।

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संत, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

राम रमत तिस सबके सूझे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ, दो तुके सत।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरेओ लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ एन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा बिटवे राम रम।

अंत अनंत अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुरप्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूट।

मिरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ ओ है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोह है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडपागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम।

लाले गोले गुरसिखा के जिन्ना अनदिन हर प्रा पुरख ते आया मेरे मन तन बिरो गुरसिख पगलाया मेरे प्राण सका गुर के सिख भाई मोको करो उपदेश घर मिले मिलाया हरहाओ क्या हर प्रा पावे ता गुरमुख मिले जिन वचन गुरु सदगुर मन पाया वडभागी गुर के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सदगुर संगत संग न पाया से पाहीन पापी जमखाया आप किरपाल किरपा प्रतारे हर आपे गुरमुख मिले मलाया जन नानक।

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यों चित लावे अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाहीन मुए मर जावे आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बगस मिलावे एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा कर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कौ सुनबंद।

सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महल।

अंतर मैल न उतरे हो मैं बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। कोड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी हरहाओ सात वेद सिमर सब सोधे

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते थाए साध संगत को जोए न सक मर मन तो वे पाए आमु आए परयो शरण आए गुज पाप को बौद्ध परजार मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जाख।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन सरमन अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लेव लागी। कबल प्रकाश पए सासंगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण पर्यो नांग प्रा तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच दे मनहार ऐ जी जब तब संजम सच आधार हर घर नाम दे सुख पाई है।

सिद्ध साधक लिवलागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांड त्रैगुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सवे ही नाचे, नाचे खानी चारी, जो तुद भावे से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिवलाए, से भगत से तत ज्ञानी, जिन कहु को मनाए, एहा भगत सच्चे।

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी। संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे साण परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पग माया तारी। संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। यो प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी। हर एको सूत

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाध दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण।

अंत गया पछताई, अपनी कृपा कै गुर पाई है विचों आप गवाई, तृष्णा भुख विचों उतर है, सुख वसे मन आई।

पौड़ी ए मन अत लोभिया नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दहत फिराता अगे नाओ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हरसना चखे फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखे।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दयान जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल, सासंग उठिया जन मरण पौ कटिए, जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप, इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया, ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा, बार विडानड़े हुमस तुमस कूका पईया राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर फेटिया, होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया, पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया, तत ज्ञान लाए ध्यान दृढ़ समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया, परख खजाने पाए से बौड़ ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा, वेशो हुए जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े, जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच। महला पंजवा, जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे, नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी, तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पै बिस्माद दे कुदरत तेरिया, सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया, तेरे हथ निदान भावे तिस देह, जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे, अगम अगोचर बेअंत